Sindsdien 24 uur per dag. Ujala Radio. आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है. चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net. उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर. जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए. उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है. काम में लाई उजाला रेडियो. उजाला रेडियो आपके साथ.

0: ताली ताक झुमी ताक ताली ताक झुमी ताक झाला आंबो ताक झुकी ताक ताडी गेन ताक नाक ताक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन जाने कोकू तारी ता कोकू तारी गेट ताली झम तारी ता झग तारी ता झन जाने कोकू तारी ता कोकू तारी गेट झम तारी झग तारी ताक नाक नाक ता झन ता झुमी ता झन ता झम तारी झग तारी जाने जाने कोकू ता झन ता झुमी ता झन ता ताक झंग झंग झंग कळ झग झंग झंग ताक झंग झंग झंग
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालां जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुर्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

चाहिए। पंजतन से, मुर्तुजा से, फातिमा से प्यार हो, और वली ख्वाजा कुतुब गौसुल वरा से प्यार हो। जन्नती औरत वही है जो बदी से दूर हो, उसके चेहरे पे

ये तू एहसास होना चाहिए, जोहर गैरत भी तेरे पास होना चाहिए। लाज है तू खानदान मुस्तफा की लाज है, ओढ़ ले गैरत का चल फातिमा की लाज है। खानदान मुस्तफा की।

हुस्न है किस काम का जब नेक सीरत ही नहीं। दिल वो क्या जिसको के एहसास शरीयत ही नहीं। खूबसूरत तो बहुत है नेक सीरत चाहिए, नाज हो दुनिया को जिसपे वो शराफत चाहिए। बाप और माँ की करो खिदमत इबादत है यही, उनके कदमों में रहो हर वक्त जन्नत है यही। रुखसती जिस वक्त हो माँ बाप के घर से चलो, है नसीहत के अदब ससुराल वालों का करो। खिदमत शोहर भी तुझ पर फर्ज है ऐ बावफा, साफ रखना चाहिए नफरत से दिल का आईना। राबिया बसरी पे महबूबे खुदा को नाज है, वो भी एक औरत है जिन पर फातिमा को नाज है। तुम भी वो औरत बनो तुम पर भी सबको नाज हो, पारसा ऐसी बनो महबूबे रब को नाज हो। मान ले यूसुफ की बातें कह रहा है ये समर, पंज गाना पढ़ नमाज वक्त कम है गौर कर। खौफ उकबा का नहीं, खौफ उकबा का नहीं।

दिल ने कहा या बाय उदित नारायण एंड अलका जी हिमेश हद म्यूजिक गमार तुम तरतायत इन 2002 मगर नु गाव नार एन अंदर एन प्राचटिग लीडजे आउट हम होगे आपके देर से हुआ बाय अलका जी म्यूजिक बाय नदीम श्रवण एंड डोंट गिव

बिल्कुल ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिल्कुल ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज शुक्रवार 17 तारीख जुलाई का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, हमसे पहले प्रोग्राम को बना रही थी आरजे रंशुदी दंकिबाओ पैन दख्तु खवेंस पैन वीकेंड। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहदिल से मुबारकबाद अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो इनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। यहां से लेकर ठीक दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जहां पर आप लोग सुनते हैं, सुनते ही जाइए दिन में 12 बजे तक। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं। खुद मोर खलमा उजाला रेडियो का दफ्तर भी आज दिन में 10 बजे से खोले जाएंगे शाम में 3 बजे तक। यहाँ का फोन का नंबर है 020-409-0807 पर आप उतार कर सके, या तो आप जाइए उजाला का वेबसाइट पर www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर जानकारी आपको मिलेगा। चलिए हमारे प्यारे सुनौलो प्रोग्राम को आरंभ करते एक सुंदर सा लक्ष्मी चालीसा जो आप लोग सुनेंगे।

और इस तरह से सुंदर सा लक्ष्मी चालीसा जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम खुद मोर खालमा आप हरी खुश दिन

हमारे प्यारे सुने वाले दिन में 12 बजे तक आपके साथ है और आज का प्रोग्राम में कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी सुनने वालों को हम खिदमत करने वाला हूं। आओ चलिए प्रोग्राम में पहला गाना

सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अवसरों से ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही गीत प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। और अम सलम सहित उसमें हमारे मामी खैरदा जी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने। खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग।

लग जा गले। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, बोले लग जा गले आज की रात, बोले साथ मुलाकात हो ना हो, इस तरह से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। इसके देश शहर में लीना रामेश्वर भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। गुड मॉर्निंग लीना, गुड मॉर्निंग।

चाहे मेरा जान जाए, चाहे दिल जाए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए। दनहा शहर में आनंद जग्गू भाई जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। अपन ओतोवा में कहूं जा है गुड मॉर्निंग, अब ये गाना तुम्हारे नाम।

वेल यार, दिल दिल क्या करे, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए रख के सभी प्रोग्राम को बैठकर सुने। दरहा शहर में खुद मोरख भाई जी, और ये गाना तुम्हारे नाम।

वेल यार मेरी महबूब, आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। भाई राकेश, आज शुक्रवार बैना वीकेंड, वत खाओ ए तैयार, वत खाओ कौ को फंदा। या वेल यू आर उजाला रेडियो। और देखा जाए मानो भी हो दौरव शहर में प्रोग्राम को बैठकर सुन अपने सुनूषक के लिए।

वेल यार, लिखे जो खत तुझे, आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, आज शुक्रवार 17 तारीख के जुली का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे, चाहे आप लोग जो जी करत हो या प्यार से दुलार से जरूर से करिए। और चलिए इस बार और देखा जाए सत्या भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मोरखे।

गुम है किसी के प्यार के, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अन्य जगह जय दलहा में संत तहलू भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मर्ख गुड मॉर्निंग करीबन 5 मिनट बाकी रहा 10 बजे में 5:14 आई बॉय गुड मॉर्निंग अच्छा बाय ना वीकेंड

और हमारे प्यारे सुनने वालों, दो मिनट बाकी रहा दस बजने में, या एक मिनट बाकी रहा दस बजने में, नाद ब्रेक नाद रिक्लाम बेनक वित्रुख्यार जबलो एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम भी है, दफ्तर भी खोले जाएंगे, यहाँ का फोन का नंबर है 9 3 9 9 0 0 0 7 पर आप लोग तार कर सके हर एक काम

जो भी आप लोग वीकेंड तो में करिए प्यार से दुलार से कर लेना, जो भी पकाइए यार जबाओ, या तो आप लोग बैठ करके ऑन बैठ करते होंगे चाय या तो कॉफी के साथ स्वादिष्ट भोजन कीजिए और चलिए आप लोग लिए गाना पेश है इस तरह से।

प्यार प्यार हो जाएगा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। चलिए अब की बार एक और खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। देखा जाए सांद्रा भी उजाला रेडियो का प्रोग्राम बैठकर सुन रहे प्यार के साथ, तो ये गाना तुम्हारे नाम

0: गीत चाहत का मौसम आ गया और गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो बैल शहर में जगह जय सुनीता प्रोग्राम को बरकर सुने खुद मुर्ख।
1: मोहब्बत तो वो है जो दूरियों में भी महसूस हो, तुम मेरी किस्मत में हो या ना हो ये नहीं जानता मैं, मगर तेरा नाम लेते ही दिल को

है तू चली गई लेकिन तेरा प्यार नहीं गया। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अरिजीत सिंह जी के आवाज में। और देखा जाए होफ दौरव शहर में श्रीमान आनंद मंगरू जी भी प्रोग्राम को बारी कृष्ण खुद मोरख और ये गाना तुम्हारे नाम।

तो जीने की है वजह। अवसरों से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। ब्रेडा शहर में श्रीमान और श्रीमती बिहारी जी भी प्रोग्राम को बैठ के सुने। खुद मोरख

आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने तो और तू, इस तरह से गीत जो आप लोग सुन रहे थे, आशा है कि आप सभी सुनने वालों को भी पसंद आए हुए होंगे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार का प्रोग्राम, और हम आप लोग से पूछ रहे कि आज का पकाओ वत खाओ फंदा कोकन। तो भाई राकेश हमें पठाइज बोला सेम आलू मैथ वारम फीसी आश्वितर चलन दे भाई जी। और चलिए इस बार अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

दिल से तेरा साथ है मेरा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, और हमारे प्यार सुनने वालों, चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो फैंस पोल्डर में देखा जाए मिला भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख मिला। और चलिए गाना जो आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से गाना आप सुनेंगे,

वेलियर और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और देखा जाए बेल्शी शहर में जहां पर इस वक्त मिला भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं

बलियर नूर की तेरी काशी शहर, वाओ कितना मोई कितना बीसाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुनने वालों और करीब

और दनहा शहर में आनंद जग्गू जी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख भाई जी। आई बॉय है अपना दिल तो आवारा चलन दे लेट्स गो एंड यू आर

0: दिल तो आवारा आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। हे राजेश बन्नार से भी प्रोग्राम को बड़े कृष्ण खुद मूर्ख भाई जी
1: सुन रहे हैं।
0: अच्छा
1: दिलों को जोड़ने वाले
0: एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम करीबन 3 मिनट बाकी रहा 11 बजने में।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम यू आर उजाला रेडियो। आई बॉय वीकेंड वीकेंड बा आई गेल बा। आप सभी सुनने वालों को फाइन वीकेंड तू खवेंस हमारी तरफ से सुफ वीकेंड। आप हर एक को वीकेंड के जय हो यार। और केस पठाई जो गैप बोले अत स्पंदक सिंपल बकबार मैं ब्रात वॉर अल्लाह कर यार अश्विति बकबार चाहे जैसे बने ये ऑल टाइट लग कर एंड स्वादीज तू चलिए राजेश बनार

पल दिल के पास बस यार तुम रहती हो। आउट कचई और मेरे शहर में यहाँ पर इस वक्त माला मुंगार भी प्रोग्राम को बैठ कर रहे हैं खुद मोरखे और ये गाना तुम्हारे नाम

वेल यार, तेरा साथ हो तो क्या कमी हो, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे। और देखा जाए तो करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चुके हैं, 11:20 ओवर 11। देखा जाए अशोक एकदम मालखा में प्रोग्राम को बरकर सुने खुद मोरखे

पल यार एक प्यार का नखमा है, आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। हम आप लोग से बता दें कि हमें भाई राकेश पटेरा एक ऐप और नतुलक आचू बनाएगा सेम आलू। सेम आलू में तुम्हारा फीसी को मोई तीता तीता एंड केस बनाएगा बका भात में ब्रातवर्स्ट

बल यार फूल तुम्हें भेजा है खतू में, और फूल नहीं यार मेरा दिल है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने लाइव सफे शहर में, जहां पर इस वक्त सानू जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, खुद मोरख ये गाना तुम्हारे ना।

वाओ वाल यार, मेरा दिल भी कितना पागल है, फिर भी ये प्यार तुमसे करता है। ओ मेरे साजन, और देखा जाए अमस्तरम हाउस में पहली बार सौदागर भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं।

अब तुम भी हो मेरा आशिकी, बस यार तुम भी हो। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, शुक्रवार का प्रोग्राम वीकेंड है यार। एंड चलिए सुनीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, खुद मोर्खे।

वेल यार, तुम साथ हो बस यही दुआ करो यार। और इस तरह से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, जुआड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम 20 मिनट फॉर 12, 20 मिनट बाकी रहा 12 बजने में। 12 बजे तक आप लोग के साथ यार।

वल आशिक को ये दिल का धड़कन है यार, जो भी ये है तो दिल की धड़कन है। दिल के धड़कन क्या करिए, प्यार तो प्यार होता है। या वल आई बॉय, यू आर उजाला रेडियो।

सिर्फ तुम मेरे हो। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और देखा जाए तो करीबन 7 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, सेफ मिनट फॉर 12, तो इसका मतलब यह हुआ थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। आई बोई दिल, दिल कह रहा है दिल सन...

मेरी जान मेरी याद रखना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हम आप लोग से अपनी धीरे धीरे इजाजत चाहेंगे। यही आशा और उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम जिस तरह से हमने बनाए सजाए आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए और हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप ही को शुभ दिन, अपना शुक्रवार का दिन मौज से बिताइयो। अल्फाज आप सभी को फैन वीकेंड तू खवेंस हमारी तरफ से। सभी सुनने वालों को अपना वीकेंड तो लोग मोई से बिताइए, मोई से रहिए, अपना आपके जरूर से ख्याल कीजिए। आई बॉय, और ये गाना आप सभी सुनने वालों के लिए जो आप लोग हमारे साथ दिए। मोई से रहिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

हम दोनों मिलके कागज के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे और फिर जवाब आएगा, हाँ ना? तुम्हारी कसम फिल्म से गीत निकाला हुआ गया और गीत के गाने वाले आशा जी के साथ मुकेश जी और मुकेश के साथ अब हिस्सा लेंगे हेमलता जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये।

ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में जहां बस प्यार ही प्यार हो। हेमलता एंड मुकेश जी, इन दोनों से आप सुने फिल्म विश्वास का गीत। और अब मुकेश जी एक बार फिर।

0: live vanuit de hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: उजाला रेडियो दुनिया भर में ऑनलाइन नीदरलैंड में डीएबी प्लस पर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर ये शानदार सिनेमा जो कि पेश किया गया है चेक फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन उजाला.nl उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर हॉलैंड भर में

तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there.

है बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों, तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। लता एंड मुकेश जी से आप सुने फिल्म फर्ज का गीत उजाला रेडियो पर। अब लता जी के साथ महेंद्र कपूर को सुनिए।

दूर छोड़कर तेरे प्यार का दामन, बताइए कि अब हम किधर जाए। फिल्म वो कौन थी गीत के गाने वाले लता जी एंड महेंद्र कपूर, एंड लता जी एक बार फिर हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में। इस बार होंगे मनमोहन सिंह

0: गम से है
1: और तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम,
0: तेरी खुशी।
1: लता जी एंड मनमोहन सिंह, फिल्म वारिस से आप सुने उजाला रेडियो पर।

0: are, omdat jij bijzonder bent.
1: एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे। जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है यह भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म कन्यादान का गीत।

0: ऐसा लगा तुमसे मिलके कि अरमा हुए पूरे दिल के। फिल्म परिंदा का गीत आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर से आप सुने।
1: यू आर दिस इज हेलेन द गेस्ट फ्रॉम द ANWB। Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

जाना के साथ हमेशा पार्टी रहे तो एंड द पार्टी नेवर एंड्स फॉर द हेल फैमिली रेडियो के जरिए हेडलाइंस आप सुनिए एंड जो देन हैव नॉटिक लुचिगे ऑनवर्पे कौन ऑनवर्पे रहेगा हमने नाम मालूम है एंड आई होप दैट यू मसाल व्हाट ऑनवर्पे हैव गमेल नॉट ऑन्स info@ujala.nl info@ujala.nl पर आप ऑनवर्पे जो तुम मांगे बतियाए या जिक्र बार में हम लोग बतियाए से किला सो मुझे कैसे है als jij wil dat we bepaalde onderwerpen moeten bespreken ik word genoeg hega en de rest vullen wij wel

0: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: होठों पे सच्चाई रहती है।
2: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन